0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: गुड न्युज एफएम 105.1।
1: अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम सफल यात्रा प्रस्तुता तेज रोकाको साथमा।

0: प्रशस्त आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह।
1: आजि नेनादिगु दु निच्छ्या आत्मिकी ज्याजो स्पार्क माई फेथ जुगु विश्वास के चमक हया बिउ। याको छ जुइगो भावना यादव गठिया नाट्याकीगो जय मसी जोचलपाजी अमृता महर्जन स्पार्क माई फेथ यु जीवनिया श्रृंखला भाग 29 के शीर्षकसित न लसकु छ। छिग गुब्ले याको छ जुगु महसुस जुगु दुला छिं छिगु जीवने तस्क गम्भीर समस्या फेमा लिबले अलि छिगु समस्या पोङ्गे त छि विश्वास याहे बम सु मधु थे छि त माघु ग्वाली याए त तुन मधु छिगु अवस्था ठुकी म सुन मधु यो पिङ्गे नमेपी जिस यसु या धथे या छेला जुइबले जिस सामना याए माघु वो पार याए माघु याकचपन तैगु अप दया थे छगु चुनौती ख जिगु जीवनया नीति यशु ब्यादिगु आवान्या त जिगु छेज दुज पासुपी व पास्टर तेस थुके फैमखु जुइफु अले अछे जुइबले यशु या लिउलिउ हुनेगु यात्रा तस्क या कचा जुइफु एलिया परमेश्वर या त धम मनुख एसा व या कचा पनलिसे संघर्ष या त एलिया या कचा हे कुफ्या जेनाचुन परमेश्वर एलिया या त नियन छ थन छादु नापाङ्गु राजा झिनगुगु अध्याय झिनपेङ्गु पत्के ताटगुदु व लिसबिल तक्को शक्ति दुम परमप्रभु परमेश्वर या नीति जिके युकु जोस्तु इजरायली देश छिगु बाचा या त तोतुगुदु छिगु बेदी या त थुना बिउगुदु अले छिगपिन नि अगम्बक्ता ते त तरवार स्यागुदु जिजक्क ल्योदनी इम्स जित न स्या त सोया चोङगुदु एलिया परमेश्वर लिसे वयागु यात्रा विश्वास याए बहमख समस्या तैगु वया त सैतान पनि गुजिया याना चुङ्गु ख गुबले सुनान परमेश्वर या नीति त रङ्गु सेवा याना चुन इपि सैतान या निसाना जुई अले सैतान न छेलिगु छगु रणनीति तैगु छित याकचपन व पराजय बारे विचार याएको कुत याइगु ख अझ खसा जिस याकस पनि थगु समस्या या त गथियाना सामना यागु जिस थगु थ त सोइबले लिय जिस थ त चोइगु लियसा झिके दुगु कमजोरी खनेदै अले थुकी झि त दुख बि जिस मेपिन त थगु सक्रिया रूपे सोइगु खसा झि निराश छादासा थोइ पृथ्वी झिगु आवश्यकता पूर्ण रूप पुवङ्के फैम छमहे मनोदु जिगु याकचपन पिने हैगु क्षमता दुम छम जक्क मनुख यीशु ख्रीष्ट मत्ती झिन्छगु अध्याय निचाको पत्के तहातगुदु कुकुबि बिया क्यानु चापी फुक्क जिथा झासु लङ्कवा जि छिन्त आरम्भी यो पिन्यनु मिपि यीशु झिगु जीवने सक्ता आवश्यकता पुङ्के फु झिस पुङ्क ठुइकी म वहे चक्क ख झिगु जीवने याकचपन या त लङ्के त क्षमता व इच्छा नित्ता वैके हेदु परमेश्वर एलिया त छु सान्तुना पूर्ण भुख्या बिया लिसम्बिल नापागु राजा झिनगुगु अध्याय चागु पत्के धातगुदु ए न झि इजरायले नेदो म पचयना ते थुपी फुक्क बाला या न्योने छ को म छुपी व वया त चुप्पा मन पिख सैतान एलिया त थहे जक दया सङ्गु धका ताका बिल तर परमेश्वर एलिया या त नेरो म थथे हे बिचा दुपी मनु त दु धका केना दिल उस सत्य परमेश्वर या त मतिना यायगु व सेवा यागु इच्छा याई गुब्ले गुब्ले झिगु जीवने झि त सुया त दुनुगुलै निसे मतिना याय अले इम्स झि त व मतिना उकथ हे लित बिम हो झिस इम्गु नीति यानुगु ज्याया त इम्स कदर मयाफु जिस इम त बिगु ध्यान इम्स झि त बि ले मफो अले जि होसिया जुई जुल धासा थुकिं झि त याकसा जुइगु व निराश याइगु अवस्था ठेङ्केफु छि त थथे जुइके बि मते जिगु मतिना व चोझागु स्रोत मेपि मनु त पाखे मुखु परमेश्वर पाखे वेमा नापाङ्गु युहुन्ना पेङ्गु अध्याय झिन्खुगु पत्के धातगुदु अले झि त परमेश्वर माया याना दिल धका झि सि न सु अले विश्वास न याना

परमेश्वर माया ख उकी माया याना जू म मनुयागो नुगले वे क दया चुनी अनि वो नापन्दै यपिन यनमिपि मनु त्यसा जित जीवने मागो मतिना गुब्ले न बीमखो जीसा परमेश्वर लिसे स्वाफु तया मतिना स्रोत देखे हेमा अले जीसा वो मतिना लिस लिसे छुना आशा मया से मेपिन त बिफै जी स्यौ गु याका सपन या वास थोहे छगु जक्क ख थौयागो वचन न्यादि गुने छि सकसित न परमेश्वर सवाबीमा जयमसे यनमिपी छिमस नकतिन हे जक बाइबलिया प्रभावशाली शिक्षकको आत्मिकी लपु केनादिम सोमन भिक्टर चोयादिगो हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्कमा इफेक्ट जिगु विश्वासके चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 65 33 39 98 65 33 39 कासा ज्याजो न्याना दिगुनी छित यकु यकुए सुबा परमेश्वर छित सवाबीमा जयमसी।

0: 该的，而不是出来给莫夫。一边，其他为查大嫂，不明说了，记得莫提那样那的。阿里，记得我不是这边嘛，是我大天这边有这边去。古里些大米，一塞地上，莫里有米的，不生产亚嘛，不在亚嘛，我不明说这样，把天不那样那，马里嘛大家心里。바이블은 근원의 외에도 투가탄 부자 야에도 니르디슨 모두 다르마사스트로 외에도 처워진 티지아모 모누야루비 뇨베가다구 두 구미시다 벌미슈라 더구 어느그라하 비다 레야디구카 루가 저구어대의 수위 저구벗게 다야다구두 뇨 투업와체더이 처서마 캐모저부이키 अले वयागु ना छौं इशु दकाती यो पिन यन मिपिन थन बचाउँदु इशु या अर्थ प्रभु जी उद्धार कर्ता व प्रभु हे मुक्ति ख भजन 132:11 पदके दया दगुदु जी त वई म मसीह दाऊदिया वंश वई दका दाई मरियम दाऊदिया वंशे जुगुली इशु ख्रिस्त दाऊदिया तथ्य म संतान जुया जन्म जुई थुकत हम भविष्यवाणी पूर्णी लुका एक अध्याय 32:33 पदे दया तगुदु थो मजा तस्क त धनी अले दकले त धम परमेश्वर क्या धका ना जाई अले परम प्रभु परमेश्वर वया तका बाजे दाऊदिया गु सिंहासन व्याधि वेक सदा याकुबिया संतान जुजु जुयादि अले वेकल न्याबले न्याबले हे राज्य यानादि यो पिन यन मे पिन ध्यान बिया दिस परमेश्वर मरियम या त थुफुक थ थम या त दया सुंगु मदु थुफुक परमेश्वर याना दि मरियम या त थगु त धंगु आशीर्वाद बिउगु मखु छादासा व थुकिया लायक बरु व थो अनुग्रह प्राप्त या त जब व परमेश्वर या छोया हम स्वर्गदूत वया त व्याधिगु परमेश्वर या प्रतिज्ञा या त विनम्र पूर्वक विश्वास या त परमेश्वरे त धमक जीवु मफो लुका 1:34 पद के धा तगुदु अले मरियम स्वर्गदूत या त थथे धाल थथे थुक थ जुई फै जी प्याला मजुनी मरियम निजलिसे योन स्वापु तगु मजुनी थो सामान्य प्रक्रिया ख गुकी मिसाया त मच बुके बी उकी मरियम गथे याना मचा देखी फै धका बिचा याना चुन लुका 1:35 पद के दया त गुदु अले स्वर्गदूत वया त लिस बिल पवित्र आत्मा हे छिके झाएदि दक्ले त धम परमेश्वरियागो शक्ति भूम मचा पवित्र मजुई अले परमेश्वरिया क्या धका ना जाई परमेश्वर मरियम या पाथे अजु जाए पुगु रूप मुआम शुक्रकिट देखिगु योजना देखल कुकी याना मरियम प्वाथे दै अले अनन्त मजा भुइके फै लुका छगु अध्यायु श्री खुबु पदके धा तगुदु छ थला म एलिसिबा मजा भुइकी मखुदका ला छ सिहे सिउ जुई बुढी म जुसा व प्वाथे दुगु खुला दे दुकल थुगु साक्षी याना स्वर्गदूत मरियम या त वयागु विश्वासे ब लाके त ग्वाली याना चुन लुका छगु यो स्त्री नै गु पदके दाय तगुदु उके परमेश्वर र याए फुगु छुन मधु परमेश्वर या बच क्या त चिस थगु हे भौतिक सीमितता या त अस्वीकार यायमा अले परमेश्वर या अनन्तता ध्यान बीमा परमेश्वर धागु छुन असम्भव मधु धका स्वर्गदूत मरियम या त धाल मनुते स याए फैगु योक्कु ज्या दु गुगु या त परमेश्वर तस्क सक्षम दु यो पिनमेपि आ परमेश्वर प्रस्ता व या त विश्वास याना स्वीकार यायगु व स्वीकार यायगु लेगु मरियम के दु व थुकी या त अस्वीकार यायगु लेसा परमेश्वर व या त पाथे देखि मखु छादासा मनुतेस यागु स्वतन्त्र इच्छा या निर्णय या त परमेश्वर गुब्लेन उल्लङ्घन याई मखु लुका छगु अध्याय स्विचागु पदके धातगुदु अले मरियम धाल स्वयादिस जिला परमेश्वर या भाते जक्क ख छि दयादि थे हे जित जु वेमा अले स्वर्गदूत लिखाउन मरियम स्वर्गदूत तँ बिउको बचौ या त विश्वास या न पवित्र आत्मा पाखे थ त पाथे दे के बिल हो याकल हे संसारे हयादी मचाया त परमेश्वर या क्या धाई हो या गो भूमिका चमत्कार यायगु मुखो वो प्रभु या सेवक जक्क ख वो परमेश्वर या इच्छा थगु पाथे दुने पुवन के बीत तयार जुल यो पिनियन में पी छियो बारे छुदु छी परम प्रभु या दास खला छिगु जीवन या नीति परमेश्वर या योजना पुवन के त छी तयार दुला परमेश्वर नम्र सेवक पिन त माला चुन वो या त तमी पी भाला पी वा बुद्धि धुपी मनु त मुआ वो मरियम थे विनम्र मनु दे त जक्क माला चुन उबले मरियम योसेफ लिसे इहिपा यागु मधुनी अले आ वो पाछे दत आत्मिकी दृष्टिकोण थो अद्भुत व महान ख तर थुके भौतिक संसारे तथ्यको समस्या वै मरियम थ छे ज पासुपी वो धर्मगुरु या त थगु पाछे दुगु ख गछेना छुके फै इम्स वयागु ख या त विश्वास यायगु छु सम्भावना दुला व्यवस्था निनिगु पाछे चिस सिके फैकी छम मिजलिसे इपा जुई धुकुम मिसाया त मेम मिजलिसे गर्भवती जुम मिसाया त लोटकेका श्याया मागु ख व्यवस्था निपेङ्गु अध्यायु एक के थज्याम मिसा आशा याय फुगु दक्ले भालागु च्याखया रूपे बिहा तगुदु गुगु सम्बन्ध विच्छेद्याना अपमानजनक रूप छुएगु जुई मरियम या त थन तधङ्गु समस्या दु मरियम या त खल्या त सुमाल वो एलिसिबा नापल्या त कोसित थो बुद्धिमानी पूर्वक निर्णय ख एलिसिबा वो स्वया त धिम ख अले परमेश्वरिया गु ख दुम ख जुइफु एलिसिबा मरियम त छु जुया चुन धका थुके फु सायद छिन थाकु यी पारियाना चुङ्गु दु अछे खसा छि भलसा या ये फुम मनु किने त प्रभु या त इना पायाना दिस गुमिस्या छिगु विश्वास प्रोत्साहन हयाबी लुका छगु अध्याय सुई गुगु पी छगु पत्के धात गुदु ठुली जुई धका याक्न हे मरियम यहुदिया पहाडे लागु छगु गामे हुन जकरिया यु छे थेने व मरियम एलिसिबा या त जोजल पाया त मरियम वोया त जोसलपा याबले वोयागु पाछे चौम मचासन उबले एलिसिबा पवित्र आत्मा जाल अले तसल थथे धाल पवित्र आत्मा जाम जुइगु या अर्थ ख एलिसिबा प्रत्यक्ष रूप परमेश्वर पाखे सन्देश कायत्यङ्गु खसा उगु ख प्रत्यक्ष रूप मरियम या त ध्यात्यङ्गु ख लुका छगु अध्यायु पी निगु पी सोङ्गु पत्के धात गुदु मिस्त मध्ये छन् त दक्ले अप्प आशिष त अले छङ्गु पाथे दुम मचया त न आशिष दै जिमी प्रभु यामा हे जिठा बोल थो गथे जुया जुल यो पी निनमी पी मरियम एलिसिबा या त थो पाथे दुगु तका आत्तकन मदानी मरियम या गर्भ अजन सामान्य आकारे दुगु ख गर्भधारण सूर्या अवस्था जुगुनी एलिसिबा मरियम गर्भवती जु कथिया नासिल परमेश्वर वया त दर्शनिया माध्यम एसिया बारे थो ख कना दिगु ख एलिसिबा मचया त जिमी प्रभु या मा धका धाल परमेश्वर एलिसिबा या त थो मचा भविष्य या मसिह जुई धका केना तगु ख लुका छगु अध्यायु पी पेङ्गु पी न्याको पत्के धा तगुदु छ जित जोजलपा याबले जिगु पाथे चोम मचा लेले ताना सन परम प्रभु धयादिगु ख ताथे जुई तका छ पत्या यागुले छन् त आशिष दै मरियम परमेश्वरिया क्या त थगु पाथे तेगु वचन बिहादिगु ख एलिसिबा वया पाथे दुगु ख सत्य ख सिल भविष्य या मसिह आ वयागु म दुने मनासङ्गु ख सिका वो आफुङ्क हे शब्द जुल यो पिनियनमेपि थो योको सम्भावना दुकी मरियम दक्को यात्रा एलिसिबा या त नाको लाए त बिकल वो पवित्र आत्मा पाथे दत धका छु धा फै धका बिचायना छुन मरियम थिने व हे तस्क राहतिया सास लागुजुबा छादास ओ थकाकिया मेदुने छु अलौकिक घटना जुगु दु धका विश्वास याय त छु धायमागु मधु धका सिउ परमेश्वर थगु जानकारी एलिसिबा याद छगु प्रकाश या माध्यम केना बिल लुका छगु अध्याय पी खुगु पी नेगु पत्के ध्याटगुडु अले मरियम थे दाल जी दुनुग्ल निशे परम प्रभु या त त धङ्का सुना मुक्ति बिम परमेश्वर खना जुगु मन तस्क लेता मरियम वयागु दक्को भावना व विचार या लिसे परमेश्वर या प्रशंसा याना लिसौ बिल जुगु आत्मा ले ताल धका वैकल दयादिगु घोषणा यक्कुइ वैक या परमेश्वर प्रति तस्क भलसा दुगु संकेत बिल लो के किया त ज्यागु जुसा वो लसता लाई त मुखु जुई लुका छगु अध्याय यु पी च्याकु पत्के तयाटगुदु छादासा वैकल जी थे ज्याम भाजी या त न दयायाना दिल आउनी खेजी त फुक्क मनु देस तस्क धन्य मदाई मरियम न वो छ वो जी थे मनुख वो थ त छम छी धम छ्यो धका बयानी भजन सचिगु सुई च्यागु यु खुगु के दया त दाई कि परमेश्वर नम्र मनुते त सुई मरियम थ त थगु ऐतिहासिक व अजु चागु घटना या नीति योग्य म त धम मनु मतागु ख लुका छगु अध्याय पी ए गुगु निगु पके दया त गुदु दखले त धम व शक्ति दुम परमेश्वर जित थुक थ त धंगु च्या याना दिल वेकयागु ना हे पवित्र जु वेकया त माने आइपी वेकल पुस्ता पुस्ता तक दया याना दि दया धैगु योग्य न्याय मबिगु मुखु मरियम थ पापी ख तकासु परमेश्वर वेकया त थगु पाथे तेगु सम्मानिया नीति अयोग्य ख तर परमेश्वर अथे हे या त लुका निये छगु निये निगु पत्के धा तगुदु वेकल थगु लायागु शक्ति केना दिगुदु वेकल घमण्ड याइपिनु मने चोङगु ग्वास फुक्क सेङ्का दिगुदु वेकल बल्लापी जुजुपिन्त सिंहासन कोक्या दिल अलि छिरपिन्त छुए छोया दिल यो पिनियन मेपी परमेश्वरिया वच क्या त चिस त ध व शक्तिशाली जुइमा परमेश्वर त धम व शक्तिशाली ख जी के मागु छु जक विनम्र जुइगु ख परमेश्वर दयादिगु ज्या याय त प्रतिबद्ध पोङके बले वेकल झिगु नीति वेकया योजना या त पूर्ण सफलता हे त वेकल थगु शक्ति व अधिकार लिसे पलान यहाँका दि तका सिके गुले अद्भुत प्रोत्साहन ख यो पि नियनमेपे थौयागु वचन नियना दिगुले परमेश्वर छि सकसित न सुब्याबीमा जय मसे नियनमेपी छिमस नकतिन हे जक बाइबलिया प्रभावशाली शिक्षक व आत्मिकी लपु केना दिम सोमन भिक्टर चोयादिगु हसना जिगु हे नेपाल भाषा या रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जिगु विश्वास के चमक हया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिम के जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुले छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसी
1: होइन
2: थोप्लो थोप्लो मेगा हर्ज होइन क्या 105.1 MHz
1: पहिलो थेसलोनिकी 5:11 एकअर्कालाई उत्साह देऊ र एकअर्काको उन्नति गर। यही भदौ 10 गते बुधबार रसुवा जिल्ला साथै त्रिशुली नदीको तटीय क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय र विनाशकारी बाढ़ी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको घटनाप्रति गुड न्यूज एफएम परिवार गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पीड़ित परिवार तथा प्रभावित सम्पूर्ण समुदायप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दै यस विपदको कारण आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भनी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दछौ। कलाती 6:2 एकअर्काको भार उठाओ र यसरी ख्रिस्टको व्यवस्था पूरा गर। जनहितको लागि गुड न्यूज एफएम परिवार अनामनगर काठमाडौँ।
3: के तपाईँ वा तपाईँले थाहा पाउनुभएका मानिसहरूलाई हस्पिस केयरको आवश्यकता छ? अब चिन्ता नलिनुहोस्। थानकोट हस्पिस सेन्टरले विगत लामो समयदेखि क्यान्सर, प्यारालाइसिस र स्ट्रोकका बिरामीहरूको लागि 24 घण्टा दक्ष डाक्टर तथा नर्सहरूद्वारा बिरामीलाई दुखाई, कष्ट, पीड़ामुक्त, शान्त पारिवारिक वातावरणमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। हाम्रा सुविधाहरू 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा, बिरामीको लागि बस्न, खान, तातो चिसो पानीको व्यवस्था साथै पारिवारिक वातावरणमा हेरचाह। सम्पर्कको लागि थानकोट हस्पिस सेन्टर, चन्द्रगिरी 4, थानकोट काठमाडौँ, कार्यकारी प्रमुख सुनिल कुमार तामाङ। मोबाइल नम्बर रहेको छ 9841354402, 9841354402 र 9010334600 9010334600। फोन नम्बर 01-4392511, 01-4392511 र 01-4392510, 01-4392510 र हाम्रो इमेल आईडी रहेको छ 2007thankothospice@gmail.com र sunilforchrist@gmail.com। थानकोट हस्पिस सेन्टर 24 घण्टा बिरामीको सेवामा समर्पित।
4: सामान नभेटेर बेपत्ता
5: होइन, सामान चाहिँ के चाहिँ ल्याएको?
4: ग्यास चुलो, राइस कुकर, पानी पताउने भाँडो।
5: त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु न बाजे, हाम्रै क्रिस इलेक्ट्रो वर्ल्ड छँदैछ नि।
4: कहाँ छ यो?
5: कलङ्की खर्का गाउँ एलआरआ स्कुलको नजिकै।
6: हजुर, यहाँ इलेक्ट्रोनिकका सम्पूर्ण सामानहरू साथै घर आइसी आवश्यक सामानहरू होलसेल साथै खुद्रा मूल्यमा पाइन्छ।
7: त्यति मात्र होइन, सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू होलसेल तथा खुद्रा मूल्यमा पाउनुको साथै हाउस वायरिङको काम पनि गरिन्छ।
6: थप जानकारीको लागि प्रोप्राइटर सर्वन खड्का, मोबाइल 9510-74236, 9510-74236
7: र फोन नम्बर 01-513-010 छ, 01-513-010 छ।
6: ग्रेस इलेक्ट्रो वर्ल्ड कलंकी खड्का गाउँ एलआरआई स्कुलको नजिकै।
4: घरियासी सामान एउटै छाता मुनि पाइन्छ, ठ्याक्कै पारेर।
6: किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि वहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि वहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। योहन्ना 3:16।
8: यसैले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन।
9: । भजन संग्रह 133 को एक पदमा यसरी लेखिएको छ, दाजुभाइहरू आपसमा एकतामा बस्नु कति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ। म पास्टर मंगल मान महर्जन कोइनिरपान चर्चको, अनि तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ गुड न्युज एफएम 105.1 मेगाहर्ज।